0: मेरे दिल से आवाज उठी है, ये पूरी कायनात की ताकत मिलकर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। हमें मिलना है, तुम देखना एक ना एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे।
1: I don't get you, man.
0: अपूर्व, गाड़ी रोक।
1: क्या हुआ?
0: स्टॉप द कार प्लीज।
1: What happened?
0: खुशबू,